0: पर
1: आप इन दोनों की शादी करें ताकि आपसे एक शानदार पार्टी मिल जाए।
2: श्योर।
0: लेकिन सर एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा, शादियां दो तो पार्टियां भी तो होनी चाहिए।
1: Oh yes, of course. Why not? Come on, let's go.
0: Hello, big man. Hello, big man.
1: अपनी
0: Hello, big man.
1: अपनी अपनी जिंदगी कर देश का बहुत बड़ा अपनी जिंदगी कर देश का बहुत बड़ा स्टार।
3: Thanks.